संग मिलाए लिया मेरे करते संत साध पै साथी कर गए लीने सरबस दीने आपे आप मिलाया कौ नानक सर्व थोक पूरन पूरा सतगुर पाया। हे भाई जदों गुरु नूं चंगा लगता है जदों गुरु तुठदा है तदों ही परमात्मा का नाम जपया जा सकता है। परमात्मा ने मेहर की गुरु मिलाया ते गुरु की कृपा नाल असी नाम जपिया ते परमात्मा ने साड़ी लाज रख ली बिखे ठगोरी तो बचा लिया। हे भाई परमात्मा के चरण सदा सुख लैण वाले हैं सुख सदा ही सुख देने वाले हो सकते हैं। जेड़े मनुख हर हरी चरणा का आसरा लेंदे ने ओ जो कुछ परमात्मा पासों मंगते ने उही फल प्राप्त कर लेंदे ने। परमात्मा की सहायता उत्ते रखी हुई कोई भी आस खाली नहीं जाती। रहाओ हे भाई जीवन का मालक दा तार प्रभु जिस मनुख उत्ते मेहर करता है वह संत सुभाव बन जाता है ते परमात्मा की सिफत सलाह ते गीत गाउंदा है। उस मनुख का मन परमात्मा की प्यार भरी भगती विच मस्त हो जाता है। वह मनुख परमात्मा के मन विच प्यारा लगन लग पैंदा है। हे भाई अठे पहर हर वेले परमात्मा की सिफत सलाह करन नाल वकारा की ठग बूटी का जोर मुक जाता है। जिस भी मनुख ने सिफत सलाह विच मन जोड़िया करतार ने उसनू अपने नाल मिला लिया संत जन उसके संगी साथी बन गए। हे भाई गुरु की शरण पै के जिस भी मनुख ने प्रभु चरणा का आराधना किया प्रभु ने उसका हाथ फड़ के उसनू सब कुछ बख्श दिता प्रभु ने उसनू अपना आप ही मिला दिता। हे नानक आख जिस मनुख नू पूरा गुरु मिल पिया उसके सारे ही काम सफल होए पे।

हां जी, वापस आ गया। तुसी सुन रहे हो सांझीवास रेडियो दा प्रोग्राम सत श्री अकाल मेलबर्न, ते तुसी फीडबैक दे सकदे हो 04342339 71 दे उत्ते। ते म्यूजिक दी ब्रेक तो बाद हुण आपां हैडलाइंस न्यूज़ दियां जिहड़ियां उन्हां दे उपर एक नज़र मार लैंदे आ। विक्टोरिया ते गिप्सलैंड विच वीकेंड दी हैवी रेन तो बाद SES नो 100 तो वध कॉल्स मिलियां। कुछ एरियाज़ विच फॉलन ट्रीज़, बिल्डिंग डैमेज ते फ्लड वाटर नाल जुड़ियां इंसीडेंट्स जिहड़े आ ओह रिपोर्ट होए ने। सेंट्रल विक्टोरिया विच अज 3 नवें नैशनल पार्क्स ऑफिशियली ओपन हो रहे ने। वॉम्बेट लीडर डग, माउंट वोंगर अते पायनियर्स नैशनल पार्क्स। छुट्टियां लंघ गईयां ने ते बट चलो एनीवेज कोई गल नहीं, 3 नवें पार्क ने जिहड़े ओ सेंट्रल विक्टोरिया दे विच ओपन हुए ने। नैक्सट हॉलीडेज भी आने वाली ने, तुसी बच्चों को उदों लैके जा सकते हो ते या फिर वीकेंड दे उपर जदों मौसम वधिया होवेगा। इकोनमी रिजर्व बैंक ने 29 सितंबर नूं कैश रेट 0.25% पॉइंट्स वधा के 4.6% कर दिता। 15 सालों विच इह सब तो उच्चा लैवल होया इंट्रस्ट रेट का। फैडरल ट्रेजरर जिम चामर्स ने वीकेंड विच ते संकेत दिता कि गवर्नमेंट फाइनेंसिस उत्ते प्रेशर दे मद्देनज़र इस साल होर ब्रॉड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिलीफ की संभावना लिमिटेड हो सकती है। फैडरल पॉलिटिक्स प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनेज वालों फीजी वाल जा रहे ने, ते जिथे प्री COP क्लाइमेट डिस्कशन विच हिस्सा लैणगे। ते स्पोर्ट्स विच वीकेंड दा NRL ग्रैंड फाइनल दी वड्डी हेडलाइंस रहा। रोस्टर्स ने नाइट्स नूं एक पॉइंट नाल हराया। ते ए सन अज दे कुछ मुख हेडलाइंस। हुण मुड़दे आं अपने अज दे प्रोग्राम वल। इत्थे एक बहुत ही इंट्रस्टिंग सिचुएशन बनती है कि एक पासे पेरेंट्स कहिंदे ने कि असीं वी तुहाडी उमर विच स्ट्रगल कीता सी, बिल्कुल कीता सी, पर हुण जनरेशन दा स्ट्रगल इक्को जिहा नहीं हुंदा। हर एक जिहड़ी जनरेशन है उहदे अपने अपने स्ट्रगल्स हुंदे ने। साडे समें चैलेंजेस होर सन, अज दे बच्चियां दे चैलेंजेस होर ने। पर दूसरे पासे यंग जनरेशन नूं वी एक गल समझनी जरूर पवेगी कि पेरेंट्स दा घर फ्री होटल नहीं है। मैं एक गल प्यार नाल कह रही हूँ, गुस्सा ना करियो कि घर पेरेंट्स के घर नूं आपां होटल नहीं समझना। कई समझते ने ते कई बड़े मतलब कि इस गल नूं कहणगे कि नहीं नहीं असीं तां नहीं समझते। बट चलो इत्थे एक गल करनी जरूर बनती है, क्योंकि जिस तरह आपां पहलों गल कीती है कि बच्चे जिहड़े ने हुण अपने पेरेंट्स के नाल ज़्यादा समा रह रहे ने अपने एडल्ट होण तों बाद। जे तुसी 25, 28 या फिर 30 साल दे हो ते जॉब करदे हो ते पेरेंट्स दे नाल रहिंदे हो, घर विच कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर करो। जरूरी नहीं कि सिर्फ तुसी रेंट ही दिओ, ग्रोसरी लिया सकदे हो, तुसी इलैक्ट्रिसिटी बिल विच हिस्सा पा सकदे हो, ते जे होर कुछ नहीं कर सकदे ते घर दे काम विच तुसी हाथ वंडा सकदे हो। पेरेंट्स नूं डॉक्टर कोल लैके जा सकदे हो ते या फिर वीकेंड ते डिनर बना सकते हो। असली एडल्टहुड सिर्फ घर छड्डन नाल नहीं आउंदा, रिस्पोंसिबिलिटी लैण नाल आउंदा है। ते पेरेंट्स लई भी एक छोटी जी गल कि जे एडल्ट बच्चा घर विच रह रहा है ते उन्हूं 12 साल दे बच्चे वांग ट्रीट ना करो। उसकी प्राइवेसी, उसके डिसीजनस ते उहदे एडल्टहुड का सत्कार जरूर करो। घर एक आ पर परसनैलिटीज वक्रियां वक्रियां ने, जनरेशनस वक्रियां ने। जितनी भी कम्यूनीकेशन साफ होगी उन्ना ही प्यार बचा रहेगा। ये साढ़े सारिया वास्ते एक लैसन आ कि असी अपनी जी कम्यूनीकेशन आनू क्लीयर रखिए और स्ट्रोंोंग बनाइए। जिहड़ी गल असी सोचते हाँ कि जे मैं आ गल कीती ते मेरे रिश्ते दे विच फर्क पै जाएगा, असी उसे गल नूं प्यार नाल जे करांगे ते रिश्ते दे विच फर्क नहीं पवेगा। असी हर गल नूं लड़ाई दे मोड विच, कई वारी साडी कहण दा मकसद गलत नहीं हुंदा, साडा मैसेज देण दा गल करन दा जड़ा
वे ऑफ टॉकिंग हुंदा, वे ऑफ कॉन्वर्सेशन हुंदा, ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨ ਲੋਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਲੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰੈਸਪੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬ੍ਰੇਕ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਭਰ ਲਓ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ।

हाँ जी, तुसी सुन रहे सी सतेंद्र सरताज दा बहुत ही खूबसूरत गीत। किस तरह दा लगा जरूर साडे नाल सांझ पायो। तुसी अज दा मॉर्निंग दा शो तुसी सुन रहे हो 88.9 WIN FM तो शमा पंगू दे नाल। प्रोग्राम दा नाम सत श्री अकाल मेलबर्न। ते इस प्रोग्राम नू तुसी सोमवार सवेरे 10 बजे तो लैके 12 बजे तक ते वीरवार नू सवेरे 8 बजे तो लैके 10 बजे तक सुनदे हो। हाँ जी, तो हुण करते हैं प्रैक्टिकल जी गल के जे दो जनरेशनस इको रूफ के थले इकट्ठिया रह रही ने ते चार गल्लां पहला जरूर क्लीयर कर लैनिया चाहिए। पैसे की गल साफ जरूर करो। इकली साढ़े जी इमीडिएट फैमिली है वो उपर ही गल